0: है Like our radio.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल। Call South Hall Travel on 020-8574-8410.

0: ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती सन

तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवै लख होवै लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुग

ये क्या 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं पाते हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं चल निकले कहीं आ

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
2: With more of London's biggest Asian hits, this is Laika Radio.

0: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danu Properties.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल at all protected. This Friday, witness the ultimate clash between survival and pure malice.
3: Sir, मुझे मार देंगे, sir, मुझे मसालों, sir.
2: RFT Films and Entertainment brings you the ultimate face-off. Akshay Kumar versus Saif Ali Khan in Priyadarshan's masterpiece, Haiwan.
4: शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक ही जीप की आवाज बार-बार सुनाई दे रही है।
2: Haiwan in cinemas this Friday, September 11th, across the UK and Europe. Book your tickets now.
5: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।

बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद खुशी।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
8: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
9: I left behind everything I knew.
8: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
9: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
8: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
10: The people of Britain love their spin bikes. They bought loads of them. Another thing they love is moving their credit card balances to a Barclaycard Platinum credit card because they could pay no interest for up to 36 months. No wonder it's really taking off. A balance transfer fee of 3.15% applies, subject to financial status. T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa. पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ
14: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खुलेगा
15: नेक्स्ट रीलोड विद फिश बर्नागर
16: लाइका रेडियो लंदन
15: दिस इज लाइका रेडियो

0: Aslam. I'm Shriya Ghoshal Bedia. I'm from Ramaya Vastavaya. Davey here on Reload. Loads of you sending your answers in. Nimesh, you fixed my phone. Thank you very much indeed. Sorry, you've also aced it this afternoon. And I'd like to say on behalf of the Davling family, a very happy birthday to Rajneesh. Happy birthday. From the Davling family listening in from Birmingham and everybody here at Team Laika Radio. Got another fantastic song ready and waiting for you in just a moment. But before that, let me tell you about this. Hugely excited. If you're following it, you will love it. The 20th season of Big Boss is back, hosted by Salman Khan. The show airs every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV.
1: Laika Radio.
2: Time to reload with Vish.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: This Friday, witness the ultimate clash between survival and pure malice. RFT Films and Entertainment brings you the ultimate face-off. Akshay Kumar vs. Saif Ali Khan in Priyadarshan's masterpiece, Hai Baan.
6: Shayad koi humara picha kar raha hai. Ek hi jeep ki awaaz baar baar sunai de rahi hai.
5: Hai Baan, in cinemas this Friday, September 11th, across the UK and Europe. Book your tickets now.
7: Andha hone se bura pata hai kya hota hai? Bewakoof hona.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: Two businesses.
10: Same town.
9: Same service.
10: One appears on page one of Google.
9: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
9: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
9: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
9: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.

0: Echo Microwave Soup.
1: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
5: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
6: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
9: द साइकिल ऑफ लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनास कम्स एन एपिक ट्रू लाइफ एडवेंचर
10: आई लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग आई न्यू
9: द स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम दिल्ली हु साइकल्ड 6000 माइल्स फॉर लव Critics are calling it extraordinary, heartfelt, and unforgettable.
10: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
9: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
6: Street Foods in Chelmsford, an authentic Indian takeaway in Chelmsford. Street Foods also specialise in catering orders. Call 0561 359 604. That's 0561 359 604 to place your order.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirza.
11: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ
15: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खोलेगा
16: A Leica Radio Classic plays now

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
3: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
4: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
3: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर।

0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube Properties.
1: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
2: लाइक अ रेडियो
3: पे क्लोज अटेंशन एंड नेम द फिल्म ऑफ दिस क्रैकर क्लासिक

0: such a beautiful track. और जिंदगी में ऐसा चेहरा तो होना ही चाहिए ना जिसको देख के ही सुकून आता है. और trust me, मेरे शाम में अगर अनीसा नासिर का चेहरा ना दिखे ना तो सुकून नहीं आता है. सोचती रहती हूँ, हाय हाय मैं क्या करूँगी, किसको सताऊंगी, किसको परेशान करूँगी. लेकिन वो मेरा चेहरा है जिसको देख के ही मुझे सुकून आता है. एंड आई रियली होप कि उसके दिमाग में भी यही कॉपी पेस्ट डायलॉग चल रहा है. बट आई एम प्रीटी श्योर सर से वो ना बोलेगी, दिल से वो हाँ ही हाँ बोलेगी. इट इज अ लेजी लाउंज, लेट्स वाइंड डाउन, लेट्स रिलैक्स, लेट्स गेट रेडी फॉर द नाइट अहेड. कीप दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस रोलिंग.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 in British sterling tonight is giving you up to 127.9 Indian rupees. But remember, transfers must be online, in store or via the app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling tonight is giving you up to 128.43 Indian rupees, 375.71 Pakistani rupees, 445.15 Sri Lankan rupees, 166.39 Bangladeshi takas, 89 Afghan Afghanis and 1.35 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Radio Wally's Lazy Lounge.
0: This track has been in my head all day. Lekin maine beimani nahi ki. Wafadari nibhai. I'm sharing it with you, so turn up the volume.
3: Mera

0: beautiful track, isn't it? Shaya Ghoshal ki Awaaz from the album Sukoon, which of course was produced by the one and the only Sanjay Leela Bhansali. And we spoke very deeply about Shaya Ghoshal. Check out the full interview on my Instagram page and the Laika Radio YouTube channel as well, both. So now, though, I leave you celebrating Rahat Fateh Ali Khan, and I'm dedicating that track to you guys for tonight, followed straight by that, one of my favourite tracks for 90s at night. So until tomorrow, good night, God bless, stay safe, stay warm, stay hydrated. Aur kal tak mucho pyar.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Time to sit back and slide into Radio Wally's Lazy Lounge. On this week's Laika Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करेगा। और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी, उसको आगे जाने से रोक सकते। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
1: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda, a free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: One performer,
5: countless personalities,
4: a whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK tour 2026.
4: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Production.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
1: South Hall Travel, at all protected.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Laika Radio Network.
9: The wait is finally over.
10: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
9: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
12: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
9: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
11: Mirzapur mein ek hi darwaza hai, Adil ji. दूसरा कोई नहीं खोलेगा।
13: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री राम लीला .theshowmanstudio.co.uk

0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound. Laika. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: This is Leica Radio. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil
2: Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक

0: Naughty Head.
1: Leica Radio.
2: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574841। साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected. The bike.